per attaccare. World Cup 2026 को अवसर में CGTV ने लिया को सम 3+3 वर्ष को वारंटी साथ ही 36,000 समय को कैशबैक सजिलो 0% EMI को सुविधा नागरिकता भाई पुक्छ World Cup to World Cup CGTV खेल संगई भरोसा संगई

0: रेडियो साइमन 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर दौड़ने इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हैं, हम आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें।

0: क्या बावरट
1: कौन
0: पता नहीं दारू पी के गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
1: फालतू है साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है चल चल चल चल चल चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल।

हमें भी ऐसे पीछा करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौट रहे हैं। इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हैं हम, आज बोलते थे पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो।

0: पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।